अस्मत्परम् गुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः विघ्नेश्वराय परदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते।

0: क्या घर ये दर्पी आ गया
1: दौलत
2: कौन
0: पता नहीं दर्पी की गाड़ी चला रहा था मरते मरते बची हूँ मैं
2: फालतू है साला मुफ्त में सुन रहा है मत देख उसको चल छोड़ मैनेजर देख रहा है।

हमें भी ऐसे पीछे करना अच्छा नहीं लगता, हम भी कल्चर लॉन्ड हैं, इतने सालों से हिम्मत जुटा रहे हैं, हम आज बोल देते हैं पसंद हो तुम हमें, तुम डिसाइड कर लो क्या करना है।